नेपाल पे क्यूबार में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूबार में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूबार नेपाल के अपने क्यूबार।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: संगे नेपाल पे क्यूआर में आवधिक क्लक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर
1: जिंदगी ने कई मच्छर बाटो लगा जो विदेश जाऊ पासवर्ड बनाने पैसे
2: ओइ ठुले एक्लै बसेर के गुनगुनाइराछस् त
1: के गर्नु दाजु यहाँ बसेर के काम नाम पनि छैन पैसा पनि छैन अब इन्डियातिर जाने सुर कस्यो हौ दाजु मैले
2: अब इन्डिया नै जाने सुर कस्या भए रोका मेन पावर सप्लायर्स अमृत शहर पंजाबमा जा
1: के भन्छ नि दाजु मैले त कुरै बुझिन त
2: हौ हो त नि अमृत शहर पंजाबका विभिन्न होटलहरूमा बस्नको व्यवस्था सहित वेटरमा जागिर लगाइदिनुहुन्छ मासिक 24,000 देखि 48,000 सम्म नेपाली कमाउन पनि सकिन्छ नि
1: हो र दाजु कहाँ गएर कोलाई भेट्ने के गर्ने केही अत्तो पत्तो थाहा छैन मलाई त
2: हराउने कोलाई भेट्ने तैले चिन्तै लिनु पर्दैन नि यसको लागि त काठमाडौँमा रहेको रोकाए मेन पावर सप्लायर्स चन्द्रागिरी तीन थान नजिकै रहेको छ नि
1: हो त्यही गएर सूर्जन रोकाईलाई भेट अनि फोन नम्बर नि दाजु फोन नम्बर त चाहियो नि फेरि उहाँ गरी के हो कसो
2: ल टिपिराख फोन नम्बर 98209393 98209393

नेपाल पेक्युबार में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पेक्युबार में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पेक्युबार नेपाल के अपने क्यूआर

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 11 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: छैन यार।
1: शहर में भीड़ सब मानसे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो झमेला।

नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

आप एक ही बार में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: संगे
1: नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

संगे नेपाल पेट्युबार में आवत हुई क्लक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहज से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज़
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को था
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी